0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June.
2: Hi, this is Imran Hashmi and you're listening to me on Radio Haji.

0: मिक्सिंग इन द हाउस। सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: रेडियो। हाँ जी 1674।
1: यार तू इतनी नीचे थी, आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
2: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन.com.au।

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर स्टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: फुलकारी उत्ते बेल बूटियां मित्रां दे चादर ते पा दे मोरी। सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना गिप्पी गरेवाल, तुसी सुन रहे हो हांजी रेडियो।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन। हाँ जी 1674 AM

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हुन थोड़े मोड़े नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
4: दिस स्टेशन इज नाउ द अल्टीमेट पावर इन द यूनिवर्स।
5: रेडियो हांजी 1674।
6: Hey man, Sadbir Ojala, Geet MP3।
7: सारा शहर हमें लॉइन के नाम से जानता है, मोना डार्लिंग।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji. Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June।
2: हुन थोड़े मुडे नाल मुडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नु होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
3: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानु हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 Old Geelong Road, Hoppers Crossing, Werribee Toyota, the smart choice.

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार
1: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
2: आहो जी आहो
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच

0: लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनना होना चाहिए। हांजी हांजी, अभी ना कहना ना जी ना जी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हेलो, मैं हूँ सनी देओल और आप सुन रहे हैं हांजी 1674 AM। रिच बॉय।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून
2: हुन थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नु होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
3: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानु हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेयर बी टोयोटा दे नाल
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431 465 186 ते 216 Old Geelong Road, Hoppers Crossing. Very B Toyota, the smart choice.
4: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਯੁਵਰਾਜ ਹਨ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂ ਜੀ 1600 ਚੌਕਰ

0: This is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए, लेकिन हंसते रहिए.
1: बेबी मेरी हाय हाय कोली मारे, अखियों से हाय हाय कोली

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवरस्टंच विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 ते या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.in।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June।
2: रेडियो हाँ जी 1674 एम दे उत्ते तुहाडा सारयां दा स्वागत है जी। अज 30 मई 2026 और शनिवार दे दिन भारत आस्ट्रेलिया दुनिया जहान दियां खबरां दा बुलेटिन अज तक दे दिन दा तुहाडे तक लैके आए। सब तो पहला शुरुआत इंटरनेशनल न्यूज़ दे नाल जिथे ट्रंप दी क्यूबा नूं दित्ती धमकी दे बारे तां तुसीं सुनी लिया होना हुण तक तां खबरां आ गईयां सी, पर क्यूबा दे विच किस तरीके दे नाल हुण संकट पैदा किया जा रहा है जां हो गया है इस दे नाल जुड़ी ये खबर है ताकि क्यूबा नूं भी समय रहिंदिया होया तहस नहस किया जा सके। क्यूबा अपने पूरे इतिहास के काल के हुण तक के सब तो भयानक ऊर्जा संकट के विचों गुजर रहे। जेकर तुहानूं याद होवे तां इह लगभग कुछ उस ही तरीके का संकट है जिमें वेनेजुएला दे विच पैदा किया गया सी। तेल की भारी कीमत हो गई है, बिजली सप्लाई मिल नहीं रही, जल सप्लाई कारण भी लोग प्रभावित होए पए ने। लगभग 30 लाख लोग हर रोज़ पानी की बूंद बूंद दे लई तरस रहे ने। सरकारी अधिकारियों ने इस माड़ी हालत दे लई अमरीका वल्लों लगाई गई आर्थिक पाबंदियों नूं जिम्मेदार ठहराया। देश का जल सप्लाई विभाग अपनी लोड़ का सिर्फ 37% तेल ही हासिल कर पा रहे हैं। पानी की पंपिंग दे विच बिजली की खपत होंदी है ते बिजली की खपत जिहड़ी है वह तेल दे नाल पूरी की जाती है, पर हुण जदों तेल की कमी है ना सिर्फ पानी की सप्लाई रुकी पई है सगों पाइपां की सफाई मरम्मत कैमिकल्स की दरामद सारा काम ठप्प होया पिया। क्यूबा की लगभग 1 करोड़ आस पास की आबादी है और रुक रुक के जल सप्लाई जे कारण सारी ही आबादी परेशान हो चुकी है। पूरे देश नूं प्रभावित किया है, कोई एक किता नहीं है। इस दे नाल ये भी खबरां सामने आ रही ने कि रोज़ाना देश दे विच 20-20 घंटे लंबे बिजली दे कट लग रहे हैं। क्यूबा दे राजधानी शहर हवाना वर्गे बड़े शहरां दे विच भी पूरा दा पूरा ढांचा जिहड़ा जिथे इस वक्त बड़ी आबादी है उत्थे भी यह जोर पिया हुआ है। कई इलाकों टैंकरां दे राही पानी पहुँचाने की कोशिश की जा रही है पर वह नाकाफी है। रिपोर्टां दे मुताबक जनवरी महीने तो अमरीका ने क्यूबा दे उत्ते पाबंदियां होर सख्त कर दित्तियां ने। क्यूबा नूं ना तो कोई होर गुआंढी देश तेल दे रहे ने। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हां देशों पर भी टैरिफ लगाने की धमकी दी है जिहड़े भविख च भी क्यूबा नूं तेल वेचणगे। जिक्रयोग है कि क्यूबा अपनी लोड़ का सिर्फ 40% तेल ही खुद पैदा करता है, बाकी दे लई उह दूजे देशों पर निर्भर करता है। वित्तीय संकट इन्ना गहरा गया है कि विभाग पहले सालाना जिहड़ा $100 मिलियन का पहले उन्होंने पुरजे खरीदे सीगे वह भी हुण उन्हां दी खरीददारी नहीं कर पा रहे ने, होर नवें पुरजे भी नहीं खरीद पा रहे ने, नवी खरीद भी नहीं हो पा रही है। उधर खाड़ी देशों के जारी तनाव ते शिपिंग रुकावटां दे विचकार आम लोगों के लिए राहत की खबर आ सकती है, आई नहीं है। अमेरिका के जेडे ट्रैजरी सैकटरी ने स्कॉट बेसेंट उन्होंने दावा किया है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट के शिपिंग दी रुकावटां दूर हो जाएगियां ते विश्व पद्धर के उत्ते तेल की कमी के जी गिरावट आई हुई है वह तेजी के नाल पूरी होएगी। दस दिए कि इस समय लगभग 2000 जहाज खाड़ी तो बाहर निकलन का इंतजार कर रहे हैं। यह कहा गया है कि जिवें ही रस्ता खुलेगा तेल की सप्लाई बढ़ जाएगी, कीमतां हेठ आ जाएगियां। ऊर्जा संकट का बनया हुआ डर भी दुनिया भर के भी वधा चढ़ा के पेश किया जा रहा है क्योंकि हाले बाजार च सप्लाई भी मजबूत नहीं सी। बेसेंट ने आंकड़े का हवाला देंदे कहा है कि जिहड़े जियोपोलिटिकल सिचुएशन है इस वक्त मई महीने के जो भी सी सो सी हुण जून महीने के सिचुएशन बदल सकती है। वो वक्री गल है कि हाले तक ईरान ते अमरीका दे दरम्यान कोई भी समझौता टेबल दे उत्ते नहीं पे है। अमरीका हमेशा दी तरह बयान दे रहे है शिपिंग आम वर्गे हुंदे ही गैसोलीन दीआं कीमतां भी राह ते आ जाणगीआं, पर ये कदों होणगीआं या किवें होएगा ये काफ़ी हद तक अमरीका दे उत्ते निर्भर करता है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट दे राही बेसेंट ने यह भी दावा किया है कि इसनों निर्विघन चलाना भी ट्रंप सरकार का एक टीचा होएगा। हुण तक तां निर्विघन ही चलता सी पर अमरीका दे जंग तो बाद ईरान ते ओमान ने रल के इस राह दे उत्ते टोल लगाने की तजवीज़ पेश की जिस तों अमरीका भी हुण नाराज़ नज़र आ रहा। उत्थे भारत दे खिलाफ जिहड़ा माहौल एक आस्ट्रेलिया दे विच बनिया सी अमरीका दे विच बनिया सी वह हुण बरतानिया दे विच भी लगातार बढ़ रहा है। बरतानिया दे एक पार्लीमेंटेरियन ने पार्लीमेंट दे विच खड़े होकर भारत ते पाकिस्तान तो आए प्रवासियों के बारे बयान दिता। बरतानिया की दक्षणपंथी पार्टी रिस्टोर ब्रिटेन शुरू करन वाले रूपर्ट लव ने कहा है ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਿਫੋਰਮ ਯੂਕੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੁਪਰਟ ਲੋਵ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰੇਸਿਸਟ ਕਹਿਣ, ਨਸਲਵਾਦੀ ਕਹਿਣ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ 'ਚ ਰਪਟ ਲੋਵ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਏਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਬਰ ਰਿਫੋਰਮ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ 2-3 ਜਾਂ 4 ਬੁਰਕੇ ਪਹਿਣ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਦੱਸਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਪੁਲ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 6 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਲਬੇ 'ਚ ਦਬਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 3 ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਦਸਾ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2 ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਮੀਰਪੁਰ ਅਤੇ 4 ਬਾਂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਰਾਤ ਭਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਸੀ। JCP ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਬਾ ਹਟਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਕੇਵਲ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਵਰ ਚੰਦਰ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਿ DK ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਗਹਿਲੋਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਫੈਮਿਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਦੌਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਜਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪਿਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਲਦੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਾਂ ਭਲਕੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ DK ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਯਤਿੰਦਰ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸ ਜਨਪਥ ਆਵਾਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਰੀਖ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜੇਕਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮੌਲੀਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਯਾਨੀ RBI ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ PTI ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ RBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਫਿਊਲ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ चालू वित्त वरे दे अंदर भारत की अर्थव्यवस्था की यात्रा मजबूत रहेगी। मजबूत माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल अर्थव्यवस्था नूं सहारा देंगे। इस तों अलावा कारपोरेट ते बैंकिंग खेत्र भी मजबूत रहेंगे और सरकार की जिहड़ी कैपैक्स ने उहदे ते लगातार दिता जा रहा जोर भारत की मजबूत जिहड़ी विकास दर आ उसके लिए एक सकारात्मक संकेत है। जियोपोलिटिकल रिस्क ने बेशक साल 2026 दे विच एक बड़ा दबाव बनाया पर भारत इस दबाव दे विचों बच के निकल जाएगा, आर बी आई का दावा है। उत्थे भारतीय शेयर बाजार के नाल जुड़ी हुई खबर की सांझ पाई है तो लगातार तीसरे दिन भी गिरावट का दौर जारी रहा। शुक्रवार के दिन सेंसैक्स 1092 अंक डिग पिया। बाजार के हालात कुछ होर दसते हैं, आर बी आई कुछ होर दसद। पी टी आई की खबर के मुताबिक गिरावट मानसून के अनुमान को लेकर तो भारत माफ करना अमरीका तो ईरान के दरम्यान जी जंगबंदी की खबर ने जड़िया के जिन्हें कोई मोहर नहीं लग पा रही, सो अनिश्चितता का दौर बनया होया। इस करके भी भारत के बाजार के उत्ते असर देखने मिले है। शुक्रवार के दिन भी बाजार के आखिरी मिनटा के तेज़ बिकावली हुई। बिकावली का मतलब यह है कि वो तो वह इन्वैसटर्स ने अपने शेयर के पैसा खिंच लिया। 30 शेयरों वाला बी एस ई सेंसैक्स 1092 अंक डिगया, यानी कि 74,775 अंक से बंद होया। सोमवार के दिन देखते हैं ये कोई उछाल आता है कि नहीं, पर दिन के कारोबार के दरम्यान ये 74,599 अंक तक भी पहुँच गया सी, यानी बहुत ज़्यादा टुट गया सी। उत्थे 50 शेयरों वाला एन एस ई निफ्टी 359 अंक टुटिया, 23,547 अंक के उत्ते ये बाजार बंद होया। उत्थे आखिरी खबर की सांझ पाइए तो पंजाब दे नाल जुड़ी हुई, जिथे पंजाब दे विच स्थानक कौंसल दियां चोणां होईयां ने और चोणां दे विच कल दे दिन नतीजे भी ऐलान दिते गए ने। ज़्यादातर थावां की बल्कि सारियां जिहड़ियां नगर कौंसल्स ने, नगर पंचायतां ने, उन्हां तों ये नतीजे ऐलाने गए ने। 8 नगर निगमां सी, 75 नगर कौंसल सी, 20 नगर पंचायत सी। पंजाब दियां कुल नगर कौंसलां या नगर पंचायतां की गिनती नहीं, नगर निगम की गिनती भी ये तो कितने ज़्यादा है, पर जिन्हां दे उत्ते चोणां होईयां ने उही गिनती तुहानूं दस रहे हैं। 7,555 उम्मीदवार चोण मैदान दे विच नितरे हुए सी। ज़्यादातर जिहड़ियां शहर ने उत्थे नतीजे कुछ इस तरीके दे नाल आए ने कि आम आदमी पार्टी नूं बढ़त मिली है। श्रोमणी अकाली दल दे भी बहुत सारे वार्ड तो जेडे कौंसलर्स ने वह जित हासिल करके आए ने। इस दरम्यान कुछ एक खास चेहर के बारे जानकारियां तुहाडे नाल सोशल मीडिया तो भी असी कल दे दिन सांझी करते रहे सी। पंजाब नगर निगम दे जिन्हें भी नतीजे आए ने, उस तो बाद पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी के वर्करां का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि वंड पाउण वालियां नूं नहीं, पंजाब दे लोकां ने सैकुलर पार्टी की राजनीति नूं सराहया है। 90% तो वध सीटां आप ने जितियां, यह दावा मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया। उन्होंने कहा कि कुल सीटां असीं 1,000 तो वध जित लवांगे। जेकर 4.5 साल बाद अजिही माहौल लगती है तो 2027 दे विच इस माहौल तो वधिया माहौल नहीं हो सकता, यानी कि हुण तां सच सामने आ गए है कि 2027 च विधानसभा चोणां दे अंदर भी आम आदमी पार्टी की ही जित होएगी। हुण तक जिन्नियां चोणां होईयां, भावें सरपंची दियां, जलंधर लोक सभा जिमनी चोण या 4 जिमनी चोणां होर होईयां, उस तों बाद जिला परिषद, ब्लाक समिति ते हुण नगर निगम ते नगर पंचायत, हरेक चोण नूं सैमीफाइनल कहा जांदा सी। उन्होंने कहा कि असीं हरेक सैमीफाइनल जिते भी हाँ, तो हुण तां तुसीं कह सकदे हो कि आम आदमी पार्टी फाइनल च है। दस दईए कि 1,716 वार्डां ते गिणती मुकम्मल हो चुकी सी शाम 5 बजे तक। इन्हां दे विच आम आदमी पार्टी 841 वार्डां ते अगे सी, कांग्रेस दे हिस्से 336 सीटां आईयां सी, 238 आजाद उम्मीदवार, श्रोमणी अकाली दल 164 ते भाजपा 131 दे उत्ते ते बसपा ने भी 6 सीटां जितियां सी। इस दरम्यान अलग अलग शहरां दे विच नतीजियां दे बारे तुहाडे नाल साडे सोशल मीडिया दे पेजिस facebook.com/radiohanji ते facebook.com/hanji सिडनी तो जाके जानकारी पढ़ सकते हो। चोण की गल ही करिए तो एक चोण आस्ट्रेलिया भी हुई, पर यह चोण आम वोटर के नाल जुड़ी हुई नहीं सी। यह चोण सी लिबरल पार्टी की अंदरून चोण। लिबरल पार्टी जो कि इस वक्त आस्ट्रेलिया के अंदर मुख विरोधी धड़ है, इस पार्टी के संगठनात्मक ढांचे के मजबूती की लोड़ कही जा रही है। यानी कि इस पार्टी का प्रधान चाहे जो भी हो, प्रेजीडेंट जिहड़ा होएगा काफ़ी हद तक सीधे सीधे तरीके दे नाल उम्मीदवार तो नहीं चुनदा, ना ही उन्होंने रोल जिहड़ा हुंदा ओह पार्टी दे प्रमुख नूं चुनना हुंदा, पर प्रेजीडेंट दे रोल दे उत्ते एक महत्वपूर्ण चेहरा सामने आया जो कि अपने फैसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा चर्चा च या विवादा च भी रहिंदे ने। साबका देश के प्रधानमंत्री देश के साबका प्रधानमंत्री टॉनी एबट हूँ लिबरल पार्टी का प्रेजीडेंट चुन लिया गया और खास गल है कि निर्विरोध पार्टी प्रेजीडेंट जिहड़ा उह चुनिया गया, यानी कि शुक्रवार के दिन सारे ही मैंबर ने सारे ही पॉलिटिशियन ने पार्टी के डेलीगेट्स ने देश भर के विचों उन्होंने निर्विरोध इस अहुदे के लिए चुनिया। इस तो बाद उन्होंने अपनी 10 मिनट की स्पीच भी दिती है। इस दरम्यान उन्होंने कहा है कि लिबरल पार्टी बाहरों सट मारन वालों के लिए असी चुनौती बन के आए हैं। उन्होंने कहा कि साड़ियां अपनियां भी चुनौतियां ने, वो ये है कि लोगों के विच एक भरोसेमंद अल्टरनेटिव के तौर के उत्ते असी अपने आप नूं स्थापित कर सकीए कि लेबर पार्टी नहीं है तो फिर लिबरल ही पार्टी सरकार बनाएगी। असल च टॉनी एबट का इशारा पिछले कुछ हफ्तों के दरम्यान अलग अलग अदारों की तरफ तो किए गए सर्वेखणा के वाल से। सर्वेखणा के विच कुछ एक सर्वेखण तो रैड ब्रिज या एक्सेंचर के सर्वेखण तो यह भी कह रहे थे कि आस्ट्रेलिया जे अज की तरीक चोणा होंगे तो लेबर पार्टी मुड़ सरकार बनाएगी तो वन नेशन पार्टी विरोधी धिर बनेगी। लिबरल नैशनल गठजोड़ का पत्ता ही साफ कर रहे हैं यह सर्वेखण। पर इस दरम्यान अपनी पार्टी के अंदर जिहड़ी एक फुट लिबरल पार्टी अक्सर लै बैंदी है उसनू दूर करन दी कोशिश टॉनी एबट ने सब तो पहला की। उन्होंने कहा कि एंगस टेलर एक विरोधी धिर नेता के तौर के उत्ते बड़ा वधिया काम कर रहे हैं। उन्होंने बजट के उत्ते जिहड़ा जवाब दिता सी वह काफ़ी प्रभावित रहा, खास तौर के उत्ते माइग्रेशन लैके। टॉनी एबट ने यह गल जनतक तौर के उत्ते कबूली कि पार्टी इस वक्त वधेरे मैंबरस नू अपने वाल आकर्षित करन दे तौर के उत्ते जूझ रही है। उन्होंने कहा कि मेरा टीचा यह होएगा तो मैं अपने आप नू खुश नसीब भी महसूस करांगा जेकर 50,000 के करीब मैंबर मैं इस देश दे विच अपनी पार्टी के लिए बना ले। तो इस दरम्यान उन्हें यह भी गल की कि उन्होंने सब तो बड़ी तरजीह पार्टी नू रीबिल्ड करना होएगी तो एंगस टेलर नू अगलियां चोणां जिता के देना। लिबरल पार्टी जिहड़ी इस वक्त अपने सब तो माड़े दौर दे विचों गुजर रही है, मनाया जा रहा है कि जेकर आधुनिक इतिहास दे विच लिबरल पार्टी अगलियां चोणां भी हार जाती है तो वह पतन दे वल जा सकती है। खैर इस दरम्यान टॉनी एबट जिन्होंने जॉन ओल्सन नू डायरेक्टर दे प्रेजीडेंट दे तौर दे उत्ते जिहड़ा इस कुर्सी दे उत्ते आए ने, तुसी शायद ना सुनिया होवे जॉन ओल्सन का नाम, पर इस करके जिहड़े नवें प्रमुख हुण प्रेजीडेंट बन के आए ने टॉनी एबट काफ़ी ज़्यादा चर्चा दे विच इस वक्त नाम बनिया होया है। सर्वेखणा की गल की सी तो कुछ एक सर्वेखण तो ऐसे भी होंगे ने जिहड़े हालांकि देश का भविख तो नहीं तय करते पर नब्ज़ जरूर दस देंगे ने। उदाहरण के तौर के उत्ते अगला सर्वेखण जिहड़ा सामने आया जिस दे विच आस्ट्रेलिया के अंदर हार्डशिप का सामना कर रहे यानी कि आर्थिक तौर के उत्ते जूझ रहे लोगों के बारे सर्वेखण के विच मनाश यूनीवर्सिटी ने सर्वेखण किया। यह पूछा सी कि हुण जदों दुनिया भर च तेल दीआं कीमतां वधीआं ने तो उन्होंने लाइफ स्टाइल किमें बदलिया। सर्वेखण च यह कहा गया है कि 2177 लोगों तो पूछे गए सवाल से, ज़्यादातर लोगों ने कहा कि उन्होंने लाइफ स्टाइल हुण नहीं बदलन लग्या, वो प्राइवेट गड्डियां छड्ड

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर स्टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर स्टंच विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
3: हांजी हांजी ओए हांजी हांजी
4: हांजी रेडियो।
5: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
6: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
5: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
6: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
7: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
8: और जो हुकम मेरी सरकार।
7: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
8: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच,
7: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
8: आहो जी आहो,
7: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवरस्टन विच वी तुहाडी सेवा विच। हुन थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
9: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
7: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट choice।

हाँ जी, तुसी सुन रहे सी पाश पाश दी जिंदगी ते उसियां रचनावां बारे। आस करदी हां कि तुहानू अज दा शो पसंद आया होएगा, क्योंकि कवि कदे मरदे नहीं, ओ लोकां दी याद विच वस जांदे नहीं।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: श्रावण है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो।
2: सत श्री अकाल बादशाह, तुसी सुन रहे हैं 1674 AM रेडियो। हां जी।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: हेलो सत श्री अकाल जी, मैं हूं आपकी प्यारी सी लल्ली और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो जीवन 16।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स्टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: हाय, दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। कीप लिसनिंग।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

Kumma vaag fakira, vaag main fakira, vaag main fakira. Sorry for my poor voice, but say thank you to me for my amazing, impeccable song choice. क्या बात है, काश कोई इन्हें रिकॉर्ड कर, अच्छा रिकॉर्ड तो हो रहा है, मेरा भी कोई हाल नहीं. खैर, वेलकम बैक, दिस इज कृष्णा एंड यू आर लिसनिंग टू क्या बात है. आज मैं वह क्या बात है, वैसे मैं आज क्या बात है बोलना ही भूल गया शो द स्टार्टिंग. सो भाई हाँ जी, असी क्या बात है दे नाल जुड़ चुके हैं. आप पहले सैगमेंट के अंदर गलबात की संक कॉस्ट फैलेसी बारे, जिदा मतलब हुंदा कि आप किसी रिलेशनशिप, जगह, लोक, ऑर्गेनाइजेशन, पैसा, इन्वेस्टमेंट, फलाना टमीका एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, इन्हों सारिया चीज़ों उपर इन्वेस्ट करते रहने हैं क्योंकि असी पहले इन्वेस्ट करते आ रहे थे. सानू पता हुंदा कि इस चीज़ दे अंदर सिर्फ फेलियर है कि जे असी इज्जत चाहते हो सामने हो तो इज्जत नहीं मिलनी, जे असी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहते अपने पैसे की तो वह नहीं मिलनी, तो जे आप प्यार शायद भालते पे हैं सामने कि जिस तरह का असी दे रहे हो उस तरह का वह भी नहीं मिलना, कि सानू पता वापसी कोई नहीं, फिर भी असी खर्चा करते रहने. क्यों? क्योंकि साढ़े माइंड ने सानू ट्रेन किया कि जे आप एक बारी एक चीज़ करती है नजिठ ली है वह दोबारा दोबारा करते रहना, है ना. तो जी हूँ आप अगे इस सिलसिले को वधावे, तो आप हूँ अगे गलबात यह करा कि भाई ये जी कंसैप्ट है, जोड़ा भी कंसैप्ट लिया साढ़े आह ओहायो च रहन वाले अपना बंदिया ने आर्कस एंड ब्लूमर ने, उन्होंने किस तरह की केस स्टडी की जिस तो उन्होंने पता लगा, है ना. सो मैं थोड़े ना रियल लाइफ केस स्टडीज़ भी दस दिना जिस तो जिस तरह उन्होंने रिसर्च की. पहले का नाम उन्होंने रखिया जी द थिएटर टिकट एक्सपेरीमेंट. जी वो अंदर की किया उन्होंने सेम नंबर ऑफ पीपल लैके तीन वक्रो वक्रे ग्रुप बनाए. पहले ग्रुप नू कहा जी कि यह ना अज इस सीजन दे टिकट सगियां $15 दियाँ मूवी थिएटर दे, ते इहदे अंदर कह लो तुसी 5 शो वेख सकते हो $15 च, ठीक है. दूसरे नू $13 दी दित्ती हो टिकट, दस्या कि भाई आ जिहड़ी $13 वाली टिकट है ना तेरी आह वाली, इहदे अंदर तू सेम उन्ने शो देख सकदा जिन्ना 15 वाले ने कीते, तू खर्च पैसे पर तू सारे वेखने आ, कहिंदे ठीक है भाई. फिर बाद चो जो तीसरे की गल हुई तो फिर तीसरा सीगा जी कि ग्रुप सी, ग्रुप सी नू उन्होंने दिता $8, ठीक है. सो पहले नू दिता 15, दूसरे नू 13, तीसरे नू 8, इन्हों इन्ने इन्ने दियाँ टिकटा वेचियाँ सेम नंबर ऑफ शोज़ एको थिएटर के अंदर देखने लिए वक्खो वक्री फिल्मा दे. जवाब की आया जी, जवाब यह आया कि जिहड़ा ग्रुप ए सी जिन्हें सब तो ज़्यादा महंगी टिकटा खरीदियाँ उन्होंने ही सब तो ज़्यादा वो शो वेखे क्योंकि देवर लाइक कि असी बहुत पैसा खर्चिया, है ना. तो जिहड़ा ग्रुप सी सी उन्होंने उस टाइम उठना सही मनिया जो उन्होंने दसिया कि हूँ ये सारी बोरिंग फिल्मा ने, ये फॉरन लैंग्वेज दियाँ फिल्मा, असी तो इंग्लिश बोलना जानते हैं, असी नहीं सब टाइटल पढ़ के भाई इटालियन फिल्म वेखनी, है ना. तो वो लोग कहें कि बाय बाय टाटा टेक केयर. इस तो यह साबित होंगे कि क्योंकि मेरे पैसे वध लगे हैं, मैं शायद अपने लाइफ दे कीमती घंटे कीमती वक्त बर्बाद कर देव, तो वो सिर्फ इस कारण क्योंकि पैसे वध लगे हैं. जे उस ही चीज़ में पैसे घट दते हो गए, है ना, तो शायद मैं इन्नी ज़्यादा उस चीज़ को तवज्जो या इज्जत ना देव. इधर एक होर कंसैप्ट आता ओपरचुनिटी कॉस्ट कहें, जो लोग इकोनमिक्स पढ़े हुए हैं, जो लोग आई एम प्रीटी मच श्योर इफ दे आर वर्किंग इन रियल एस्टेट और मॉर्गेज ब्रोकर ने या फिर इन इंश्योरेंस दे, दे वुड बी यूजिंग दैट टर्म अलॉट, क्योंकि वह पॉइंट ही यह होंगे कि किसी चीज़ को छड्डन की कॉस्ट कई बार बैटर होंगी है नुकसान नालों. कि मैनू पता कि मैं करता रहांगा तो 10 रुपए का नुकसान है, पर जे मैं नहीं करांगा तो शायद नुकसान जड़ा वो घट है, तो बैटर यह है कि मैं घट नुकसान चक लवा. नुकसान तो होना ही है दोनों केसिस. सो ये चीज़ा माइंड च रखनिया चाहिए, सही कि नहीं. अच्छा फिर दूसरे पास जो तुम देख लो उन्होंने एक होर कढ़िया एक्सपैरीमेंट, यह है जी स्टडी 2, यदा नाम यह है जी द हाफ ईटन मील स्टडी, ठीक है. रेस्टोरेंट के अंदर गए, रेस्टोरेंट के अंदर लोगों ने एक्सपेंसिव खाना दिता, ठीक है. तो एक नू कहता जी खाना 2000 का, एक नू कहता जी खाना 200 का, ठीक है. सेम फूड एंड इट वॉज नॉट एट ऑल अ गुड फूड, पुअर टेस्टिंग फूड सिगा,
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗਲਾ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਲੰਘਾਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਰੋਏ ਕਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੂੰ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਡਾਇਰੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਈ ਮੈਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੈਂ $2000 ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਫੂਡ ਦਾ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਸੈਪਟ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਖਾਊਂ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ 200 ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਭਰਾ, ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ।

0: आइटम्स सब कुछ हम दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो।
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टर्न विच वी तुहाडी सेवा विच। जरा हौली।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून।
2: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन। You are listening.
1: Haji Haji, Haji Haji, Haji Haji, Radio Haji.
2: Radio Haji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: Radio Haji.
3: Stay tuned.

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: This station is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

रेडियो हांजी 1674 AM और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: Dragon is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: आपकी खिदमत में मैं अपनी चंद गजलें पेश करने की इजाजत चाहती हूँ. इजाजत है.

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी हांजी।
1: मोडी नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
2: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तों वेरबी टोयोटा दे नाल।
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस। We'll be right back.

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
2: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station. Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
3: यार तू इतने इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
1: Oh,

तेनू ओदे नाल मिलाउण आया सी। मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउण आया सी। मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउण आया सी।

ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji. Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji.

0: दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिल वाले नहीं होते।
1: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हाजी लिसनर्स।
2: Oh my God, this is original.

ओवर्स, विंग्स ओवर, हाँ जी हाँ जी, 16-74 ये नहीं है 71-72, ये है 16-74, ये है 16-74, सुनते रहो सुनते रहो, हाँ जी।

0: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुन रहे होना चाहिए। हांजी हांजी कभी ना कहना ना जी ना जी।

0: या नेक्सस।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन डॉट कॉम डॉट ए यू।
3: हेलो, मैं हूँ सनी देओल और आप सुन रहे हैं हां जी 1674 AM।

0: वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ है, आपका स्वागत है बीइंग ब्लिस में।
1: ओम शांति।
0: लास्ट एपिसोड में सिस्टर आपने कहा था आई मुझ पे डिपेंडेंट है, मैं क्या करता हूं, मैं क्या सोचता हूं, मैं कैसे रिएक्ट करता हूं। तो मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूं बिफोर आई आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अच्छी लाइन मिली, लाइफ इज नॉट अबाउट एक्सपेक्टिंग, होपिंग एंड विशिंग। लाइफ इज नॉट अबाउट एक्सपेक्टिंग, होपिंग एंड विशिंग, इट्स अबाउट डूइंग, बीइंग एंड बिकमिंग। जैसे आपका बीइंग ब्लिस, इट्स अबाउट द चॉइसेस यू जस्ट मेड एंड द वंस यू आर अबाउट टू मेक। It's about the things you choose to say today. It's about the things you choose to say today. It's about what you are going to do after you finish reading this.
1: Beautiful. Now let me ask myself, do I agree?
0: हाँ, वो choices की बात कर रहा हूँ, तो मैं agree नहीं करूँगा।
1: Life is not about expecting, hoping or wishing.
0: एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, एम्बिशन नहीं होगा, होप नहीं करेंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है, और विश नहीं करेंगे तो फिर जिंदगी तो निरस हो जाएगी।
1: जब हम कहते हैं एक्सपेक्टिंग, होपिंग एंड विशिंग, मतलब ये होगा तो, ये होना चाहिए, ये हो जाए मेरे साथ तो बहुत अच्छा होगा। एक्सपेक्टिंग, होपिंग एंड विशिंग,
0: तीनों की वजह से तो मैं जिंदा हूं। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं एक्टर बन जाऊं, मैंने होप किया था कि मुझे प्रकाश मेरा वो फिल्म दे दे लावारिस, और मैंने विश किया था कि वो चले, तो मेरी तो जिंदगी इसी पे। और आप बोल रहे हैं कि ये चीजें तीनों,
1: एंड चॉइस आपने क्या की थी उसमें?
0: चॉइस की थी घर बार छोड़ के भागा था, इस काम के पीछे लगा था,
1: दैट इज द चॉइस।
0: मेहनत की थी, इस फिल्म इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ा,
1: दो
0: साल घर से दूर रहा।
1: एक्सपेक्टिंग, होपिंग एंड विशिंग जो तीन शब्द उन्होंने बताए, इसका मतलब ये होगा तो आई विल गेट सक्सेस, ये होगा तो आई विल बी हैप्पी, ये हो जाना चाहिए मेरे साथ तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। डिड यू जस्ट कीप वेटिंग, एक्सपेक्टिंग, होपिंग एंड विशिंग?
0: दिस डज नॉट मीन कि आप इस पे काम ही नहीं करोगे, खाली होप करके बैठ के मंत्र पढ़ोगे।
1: दोनों में से कौन सा ज्यादा पावरफुल है?
0: मेहनत तो अपनी जगह थी,
1: मेहनत अपनी जगह थी। क्या बनने के लिए मेहनत थी?
0: एक्टर बनने
1: के लिए। तो एक्टर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जस्ट बाय एक्सपेक्टिंग, होपिंग एंड विशिंग नहीं बनेंगे। चूजिंग टू बिकम, यू हैव चोजन टू बिकम, आपने उस पर मेहनत की है। अच्छा, एक्टर बनना था तो मेहनत भी किस चीज पे करनी पड़ेगी? उसी पे करनी पड़ेगी,
0: उसी फील्ड में,
1: उसी फील्ड में करनी पड़ेगी। ये भी नहीं हो सकता था कि मेहनत किसी और फील्ड में करें एंड बन जाए एक्टर, ये भी नहीं हो सकता था। जो चाहिए, जो बनना है, तो मेहनत भी कहां करनी पड़ेगी? वहां करनी पड़ेगी। खुशी चाहिए, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, सो व्हाट डू आई वॉन्ट टू बिकम? आई वॉन्ट टू बी अ हैप्पी बीइंग, ना? तो मेहनत भी कहां करनी पड़ेगी? ऑन बीइंग हैप्पी।
0: पॉइंट बहुत अच्छा बोला। जैसे सिस्टम, मुझे किसी ने बोला था कि अभी आप बॉम्बे जाओगे एक्टर बनने तो खाना पीने के लिए तकलीफ हो जाएगी, तो आप ऐसे करो टेक्नीशियन बन जाओ, मतलब किसी के असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाओ, साथ में सेट पे भी सबसे दोस्ती हो जाएगी, मंथली इनकम भी हो जाएगी, साथ साथ एक्टिंग के लिए रोल्स भी ढूंढते रहना। मैंने बोला ये बन जाऊंगा तो वो कैसे बनूंगा? फिर उन्होंने कहा कि फिल्म इंस्टीट्यूट चले जाओ, तो वहां फॉर्म में लिखा था फिल्म इंस्टीट्यूट में कि अगर आपको एक्टिंग कोर्स में सीट नहीं मिलेगी तो आप डायरेक्शन में जाओ, आप फोटोग्राफी में जाओ, एडिटिंग में जाओ, मतलब इतने सारे कोर्सेज थे, ऑप्शंस थे। तो मैंने सारे ऑप्शन काटे, एक्टिंग और नथिंग एल्स।
1: परफेक्ट,
0: परफेक्ट।
1: जीवन का लक्ष्य, क्लैरिटी, व्हाट डू आई वांट टू बी, एक था।
0: वहां क्यों थी और दूसरी जगह क्यों नहीं थी? जीने में क्यों नहीं थी? बिहेवियर में नहीं थी? बाकी चीजों
1: में? बट द पॉइंट इज, जहां क्लैरिटी थी, अटेंशन दिया, एनर्जी वेंट देयर, रिजल्ट मिल गया। अब यही कोई और भी कहेगा, हाँ मुझे भी एक्टर बनना है, मुझे भी बनना है एक्टर, लेकिन उतनी डिटर्मिनेशन, उतनी अटेंशन, उतनी एनर्जी अगर उसमें नहीं देंगे तो वो नहीं बनेगा।
0: मेरे क्लास में 1974 में टीचर ने एक लाइन बोली थी, आप लोग सभी यहाँ एक्टर बनने आए हो, लेकिन जिसको 99.9 भी मोटिवेशन है वो नहीं बन पाएगा। ही सेड आई वांट 100% मोटिवेशन, जिसका होगा वही जाके एक्टर बनेगा।
1: परफेक्ट।
0: और एडमिशन से पहले किसी ने, मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे कहा कि हमारे जात वाला गांव वाला है वहां का प्रिंसिपल उस टाइम पे, मैं उसके नाम चिट्ठी लिख दूंगा। तो फिर मैंने कहा अगर उस चिट्ठी के बेसिस पे मुझे मिल जाए एडमिशन, सिर्फ 8 स्टूडेंट लेते थे हजारों में से, लाखों में से, तो मैं जिंदगी भर यही सोचूंगा कि मैं तो टैलेंटेड नहीं हूं।
1: राइट।
0: तो इतनी क्लैरिटी तब थी,
1: क्लैरिटी
0: इसी चीज में थी फील्ड में।
1: परफेक्ट ना, बट उसी इक्वेशन को भी दूसरी फील्ड में भी लगा सकते हैं ना, इक्वेशन राइट होनी चाहिए।
0: स्पिरिचुअलिटी, ये आप जो इतने एपिसोड से बात कर रही, इन चीजों में उतने परसेंट का 10% भी नहीं है।
1: बट कोई बात नहीं,
0: और 10% इच्छा भी नहीं होती मेहनत करके।
1: उसी इक्वेशन को अब लगा देते हैं इधर, उसी इक्वेशन को, कि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ खुशी के लिए, मेरी अपनी विल पावर है, आई विल बी हैप्पी। मैं सिफारिश से थोड़ी खुश होऊंगा फिर। इफ आई वॉन्ट टू बी हैप्पी देन वेयर डज माई कंप्लीट अटेंशन फोकस हैज टू गो।
0: सिफारिश से मुझे सीट मिलती, मेरा कॉन्फिडेंस जीरो रहता।
1: Exactly.
0: कि यार शायद मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ।
1: मेरी विल पावर क्या हो गई,
0: कितनी हजारों गुना बढ़ी, कितना कॉन्फिडेंस।
1: ये ही जब हम अपनी खुशी के लिए बिगड़ लेंगे कि मेरी खुशी सिचुएशंस पर नहीं डिपेंडेंट है, मेरी खुशी अचीवमेंट्स पर नहीं डिपेंडेंट है। जिस दिन मुझे ये क्लैरिटी आ जाएगी कि ये मेरी खुशी मेरी अपनी अर्निंग है, मेरी अपनी क्रिएशन है, मेरी अपनी कमाई है, तो मेरा
0: कॉन्फिडेंस।
1: नाउ फियर कि मेरे जीवन में क्या आने वाला है, कुछ भी आए, कोई भी परिस्थिति
0: आने वाला, आने वाला है,
1: आने वाला है। कॉन्फिडेंस है दैट आई विल ऑलवेज।
0: अभी तो मैं बोल रहा हूँ लेकिन सच में पूछो तो इधर या मैं जीरो हूँ।
1: नहीं, अब इक्वेशन बहुत क्लियर है, इस इक्वेशन को अब उधर लगा देना किसी भी चीज पर जहां, दैट्स व्हाई इट्स।
0: मुझे क्यों नहीं इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है जो आप बोल रहे हो कि मेरे बार बार, हाँ ये तो ठीक है लेकिन वहां कैसे लगाऊं, मेरे मन में यही आ रहा है। रियल लाइफ में प्रैक्टिकल बात तो नहीं बोल रही है सिस्टर ये।
1: आपने एक बहुत ब्यूटीफुल जो थॉट पढ़ी है ना अभी, इट्स नॉट अबाउट एक्सपेक्टिंग होपिंग एंड विशिंग, क्योंकि ये एक्सपेक्टिंग होपिंग एंड विशिंग जब है तो सारी पावर किसको दे दी,
0: दूसरे को,
1: किसी दूसरे को, सिचुएशन को
0: पावर दे दी तो मैं हो गया कमजोर।
1: एब्सोल्युटली डिपेंडेंसी, जहां डिपेंडेंसी आएगी वहां फियर आएगा, होगा या नहीं, होगा या नहीं। अब सेकेंड लाइन इट सेज इट इज अबाउट डूइंग बीइंग एंड बिकमिंग। इट्स अबाउट,
0: एक्सप्लेन दीज थ्री वर्ड्स,
1: सी द थ्री वर्ड्स, एक्सपेक्टिंग होपिंग विशिंग।
0: ये तो आपने बताया,
1: पावर कहां गई, बाहर
0: दूसरे के हाथ।
1: डिपेंडेंसी किस पर गई,
0: नहीं परिस्थिति, साथ ये बोलना जरूरी है सिस्टर, पावर गई और मैं कमजोर हुआ।
1: नेचुरली ना, अगर मैंने आपको पावर,
0: समझ उस समय में,
1: जैसे आपने पिछली बार कहा शूटिंग ही नहीं हुई सारा दिन तो मैं डिस्टर्ब होऊंगा ही ना, विच मीन्स मैंने पावर किसको दे दी,
0: शूटिंग के होने पर,
1: परिस्थिति को, सिचुएशन को। एंड दिस इज समथिंग विच वी नीड टू सी बिकॉज वी डूइंग इट एवरी डे। हम पावर किसको दे रहे हैं, इवन वेन आई लीव माई हाउस फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आई एम होपिंग देर विल बी नो ट्रैफिक जैम ऑन द रोड। मैंने पावर किसको दे दी, क्योंकि अगर ट्रैफिक जैम होगा मैं लेट तो पहुंचूंगी इज वन पार्ट ऑफ द थिंग, लेकिन ट्रैफिक जैम होगा आई गेट इरिटेटेड। मेरे पास अपनी पावर नहीं है, मेरी खुशी किस पर डिपेंडेंट है, सिचुएशंस और लोगों के ऊपर। दैट इज एक्सपेक्टिंग होपिंग एंड विशिंग। दूसरी लाइन, डूइंग बीइंग एंड बिकमिंग, ये तीनों फैकल्टीज किसकी है, मेरी। इट्स अबाउट चॉइस।
0: घूम घूम पे मेरे पे आ जाते हो,
1: क्योंकि है ही सारा खेल वहां। अगर मैंने कहा ये ठीक होगा, ये ठीक होगा, ये ठीक होगा, ये अच्छे होंगे, ये ठीक से बात करेंगे,
0: आप मेरा तो ब्लेम करने का मौका ही नहीं दोगे क्या मुझे, किसी को
1: ब्लेम इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि इक्वेशन ही नहीं वर्क करती है। बच्चा पास हो जाएगा आई विल बी हैप्पी, बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा आई विल बी हैप्पी, करियर अच्छा होगा आई विल बी हैप्पी, प्रोफेशन में सक्सेस आई विल बी हैप्पी, कोई मुझसे प्यार से बात करेगा आई विल बी हैप्पी, कोई मुझे रिस्पेक्ट देगा आई विल बी हैप्पी। विच वे इज द इक्वेशन फ्लोइंग फ्रॉम आउटसाइड टू इन, वो होगा तो आई विल बी हैप्पी। तो पावरफुल कौन, सिचुएशन एंड पीपल, मी टोटली डिपेंडेंट ऑन इट। हियर इट कम्स एक्सपेक्टिंग होपिंग एंड विशिंग, बिकॉज नाउ आई एम ओनली एक्सपेक्टिंग होपिंग एंड विशिंग दैट एवरीथिंग आउटसाइड शुड बी नाइस। बिकॉज
0: व्हेन आई विल बी नाइस
1: देन आई विल बी हैप्पी. अगर शूटिंग पूरा दिन अच्छी चलती तो मैं खुश होता, लेकिन शूटिंग हुई नहीं ठीक से तो हाउ कैन आई बी हैप्पी, विच मीन्स माई हैप्पीनेस.
0: तो यही सुन रहे, घर में परिवार शांत रखेगा तो बाहर भी शांत रहेंगे, घर में अच्छा रहेगा तो बाहर भी अच्छा रहेगा. और उससे भी जब हम छोटे थे, जब गिर के रोते थे तो माँ बाप बोलते थे चींटी नहीं गड़बड़ की, चींटी को मारते माँ टेबल ने लगाया मार के, चलो टेबल को दो थप्पड़ मार गए टेबल तो कितने गंदे है, सुरेश को ऐसा किया तो चलो हम लोग खुश हो जाते.
1: क्या सिखाया
0: हमको? यही सिखाया कि इसकी वजह से हुआ ना, तो टेबल की वजह से तो तुमको चोट आई, चलो टेबल पे को मारो.
1: इट वॉज नॉट टॉट टू अस ओनली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. हमें सिखाई नहीं गई है
0: तो पसंद भी तो आती थी, सिखाई नहीं सिखाई,
1: क्योंकि हमेशा
0: उम्र में भी
1: ब्लेम करना तो पसंद आएगा. हमारी इक्वेशन क्या बन गई जीवन की? सिचुएशन क्रिएट्स माय स्टेट ऑफ माइंड. परिस्थिति मेरे मन की स्थिति को क्रिएट करता है एंड वी लिव्ड आवर लाइफ लाइक दिस. That's why those three words are very beautiful. Expecting, hoping, wishing for situations to be nice, for
0: sir,
1: people to be nice.
0: Sir, अगर मैं आपको एक बात बोलूँ, I mean, I don't want to be pessimistic. ऐसा नहीं लग रहा कि मैं आपके against बोल रहा हूँ. चलते चलते हमारा एक्सीडेंट हो गया था. अब इतनी बुरी परिस्थिति, हाथ में मेरे भाई की डेड बॉडी है, क्या परिस्थिति अच्छी लगती है क्या? आप कैसे बोल सकते हो ये बात?
1: Right.
0: सारी कौन सी जिंदगी, किसका जीवन परिस्थिति पर डिपेंड नहीं है?
1: परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं है.
0: नहीं है, बिल्कुल नहीं है.
1: जैसे आपने कहा एक्सीडेंट हो गया,
0: और परिस्थिति का इफेक्ट सबको होता है.
1: परिस्थिति का इफेक्ट हर एक पर होता है. लेट्स लुक एट इट हाइपोथेटिकली. अभी जैसे आपने कहा एक सिचुएशन हम 10 लोगों पर आ जाए, यहाँ पर एक ही परिस्थिति, इवन लेट्स से कि शूटिंग नहीं हो रही थी, ये भी तो एक सिचुएशन ही थी, और हम
0: हर एक का रिएक्शन अलग अलग, यही बोलना है आप चाह रहे हैं.
1: बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? ये इम्पोर्टेंट नहीं है. परिस्थिति का इफेक्ट हमारे ऊपर होता है जब परिस्थिति एक होगी, और परिस्थिति का इफेक्ट
2: हम थोड़ी मोटे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू पूर्वी सोखा अति सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अति बेस्ट गूगल रिव्यूज. थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा. The smart choice.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: रेडियो हाँ जी 1674 AM।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: This station is now the ultimate power in the universe.
3: Radio Haji 1674.
0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
4: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
4: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो लोकेशन ते मिलनगे।
4: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच। हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण।

0: Hi, this is Ayushman Khurana and you're listening to Radio Hanji.
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: और जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर? हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाय, दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। कीप लिसनिंग।

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: हाय दिस इज रिचा चड्डा एंड यू आर हियरिंग ऑन रेडियो हांजी 1674 AM।
2: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: बाजू।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: दिस स्टेशन इज नाउ द अल्टीमेट पावर इन द यूनिवर्स।
3: रेडियो हांजी 16748।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
0: हांजी हांजी ओए हांजी हांजी
2: हांजी रेडियो